निकलोगे घर से बाहर तो कुछ मुश्किलें तो उठाओगे, निकलोगे घर से बाहर तो कुछ मुश्किलें तो उठाओगे, घर बैठे बैठे सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ पाओगे। दो चार कदम चलकर तो सभी थक जाते हैं यहाँ पर, दो चार कदम चलकर तो सभी थक जाते हैं यहाँ पर, लगातार चलते रहो एक न एक दिन मंजिल पर पहुँच ही जाओगे। 5:32 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

दुनिया में लोग भी आपसे तभी उलझते हैं जब आप भी उनसे उलझना चाहते हैं, क्योंकि हाथी अपनी राह चलता रहता है और कुत्ते के भौंकने की कहावत हम लगभग सभी ने सुन रखी है।

नज़दीकियाँ भी रखें और कुछ फासले भी रखें, नज़दीकियाँ भी रखें और कुछ फासले भी रखें, हर रिश्ते में नज़दीकियों और फासलों का सामंजस्य बनाए रखें, पर जब भी दिखें लड़ने के आसार, पर जब भी दिखें कभी लड़ने के आसार, कृपया उचित दूरी बनाए रखें।

5:45 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ। और अब लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत एक बार फिर से किशोर कुमार जी की आवाज में।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के अश्वनी मास की 17वीं तिथि के तदनुसार 9 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण का। 6:44 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरितमानस गान। छह बजकर 55 मिनट का समय रहता है संस्कृत में समाचारों का। ठीक 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर एक बार फिर से होंगे अंग्रेजी में समाचार।

7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे का। ठीक 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का। और 8:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये थी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। अब से कुछ ही देर में 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी

0: परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital. The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the new round of GST reforms approved by the GST Council yesterday.

मोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

न धन की चाह न वैभव की आस, बस शिव नाम रहे मेरे मन के पास। साथियों कहते हैं जब शब्द कम पड़ जाएं तो मौन में शिव का नाम ले लीजिए, जब मन अशांत हो तो बस मन में पुकार लीजिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि महादेव की महिमा बड़ी निराली है। वो संहार के देव हैं, लेकिन उसी संहार के भीतर एक नई शुरुआत का संदेश भी छिपा है। तो आइए मन की चिंताएं एक और रख महादेव को पुकारें एक साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों, कहते हैं कि प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो जुबान से बोल नहीं सकते। 6:31 हो गए हैं। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों, सही कहा गया है कि भक्ति सिर्फ मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं। भक्ति तो तब है जब अपने अहंकार को भी हम प्रभु के चरणों में झुका दें, क्योंकि जिसके मन में मैं कम होता है उसके मन में वो और अधिक दिखाई देते हैं। इसलिए उससे करबद्ध यही प्रार्थना है कि सामर्थ्य दें हमें आगे बढ़ने का और विनम्रता दें ताकि हम किसी को छूटाना कभी भी समझ पाएं।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और साथियों, अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय पाठ का। आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ को।

को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं। आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस। भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ, और इसी के साथ कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब हम जानेंगे देश और दुनिया का हाल समाचार बुलेटिन के जरिए। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के पश्चात 7:10 पर आपसे एक बार फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति, नमस्कार। और हम इसके बाद जुड़ेंगे आपसे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा व्यक्त की कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर

0: या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए मिसाइल हमले करने का दावा किया। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in the series of Departmental Summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer state collaboration. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold of prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital. The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and proportionate penalty. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the new round of GST reforms approved by the GST Council yesterday. In a social media post, the Prime Minister said that the Council's recommendations on removal of arrest provisions, greater decriminalisation and simpler procedures will have a very positive impact. Mr. Modi said that the focus is on faster decisions, lower compliance costs, automated refunds and trust-based administration. He added, these reforms are in line with constant efforts of the government to make GST more efficient, transparent and citizen-friendly. Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-share

नेट और 6 सेकंड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और दोस्त, हर दिन हमारी जिंदगी में कुछ नया तो लेकर आता है ना। कभी कोई दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी खुशियां देकर जाता है, तो कभी कभी कोई दिन थोड़ा सा अनमना सा हमें महसूस करवाता है और ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छे वाइब्स हमें महसूस नहीं होते हैं। लेकिन वो कहावत आपने भी सुनी होगी ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हम रियलाइज़ करते हैं कभी ना कभी बाद में। क्योंकि कभी जब कुछ अच्छा नहीं होता या कुछ हमें लगता है कि दुख हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है और ज़रूर सिखा कर जाता है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी सोच जो व्यक्ति रखते हैं वो जीवन में आगे ज़रूर बढ़ते हैं और अच्छी आदतें व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुँचने में आगे मदद ज़रूर करती हैं, है ना। वेल, ये बात हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हमारे साथ इत्तेफाक न रखें इस पर, लेकिन कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हमें लगता है कि ये बात सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के दिन में और अपने प्रोग्राम में। और आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मौसम का हाल आज कैसा रहने वाला है। तो आज धूप खिली रहेगी, ये मौसम विभाग कह रहा है। बारिश की संभावना दिल्ली और NCR की अगर हम बात करें तो थोड़ी कम है। और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और हवा की गति रहेगी करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। और आज 9 अक्टूबर है, आज का दिन टेरिटोरियल आर्मी डे के तौर पर जाना जाता है। आज वर्ल्ड पोस्ट डे भी मनाया जाता है। और आज बर्थ एनिवर्सरी है उत्कलमणि गोपाल बंधु दास की, जिनके बारे में हम बात करेंगे म्यूजिकल दिल्ली के पहले और दूसरे सेगमेंट्स में। और कौन कौन से प्रोग्राम्स आज आपके साथ रहेंगे 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, तो फिलहाल आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और 8:45 पर भी आपके साथ रहूंगी म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट के दौरान। 9:10 पर स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा। और 9:45 पर म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट लेकर रेखा रहेंगी आपके साथ। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद। 11:25 पर तस्वीर में आज हम आपको पंजाब में अमृतसर की सैर पर लेकर चलेंगे। और 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर। 1:10 का समय रहेगा कलाकार बेमिसाल का, जिसमें आज हम बात करेंगे अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरु दत्त के बारे में। 3:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मन भावन। 6:30 का समय रहेगा मार्केट मंत्रा का। 8:10 पर आप सुनेंगे मधुरिमा। 10:30 हर सिंगार। और 11:40 पर गीत मेरे मन मीत। और फिलहाल लता जी की आवाज में एक बहुत प्यारा बहुत मीठा गाना जो बहुत सुना जाता है चाव से, बहुत पसंद भी किया जाता है। फिल्म का नाम है असली नकली, जो 1962 में आई थी और कमाल की ये फिल्म थी। और कमाल का ये गाना बहुत सूदिंग बहुत प्यारा, खास आपके लिए लेकर रही हूँ यहाँ गोल्ड सुप्रभात में 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

चलिए जनाब, इसी खूबसूरत गीत के साथ फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त भी नजदीक आ रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब आप सुनेंगे न्यूज मैगजीन आज सवेरे और उसके बाद समाचार बुलेटिन, और उसके बाद 8:45 पर आपसे फिर मिलूंगी प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्लगी में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, डिजिटल क्रांति ईमेल और व्हाट्सएप के इस तेज तर्रार दौर में भी क्या आपको याद है वो आखिरी बार जब आपके घर के दरवाजे पर साइकिल की घंटी बजी थी और एक आवाज गूंजी थी, डाक बाबू आए हैं। आज का दिन हमें उसी खास एहसास, उसी भरोसे की याद दिलाता है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ जया भारती, आपकी आज की डाकिया लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2026 और आज दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। संचार माध्यम भले ही बदल गए हों, लेकिन भारतीय डाक आज भी हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। आज के इस अंक में हम डाक दिवस की इस खूबसूरत विरासत के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रूबरू होंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन हलचल से, जानेंगे आपके महानगरों की धड़कन यानी मेट्रो न्यूज, मौसम का पूरा हाल और आज के इतिहास के सुनहरे पन्ने। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 30 मिनट तक। और एक बार फिर बता दूं कि कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां आपके लिए है बहुत कुछ खास। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर। आज मेरी सहयोगी है तन्वी खुराना। हेलो तन्वी।
1: हेलो जया, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, दिस इज आवर न्यूज मैगजीन।

0: प्रोग्राम आज सवेरे एंड लाइक जया हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आर मैगजीन प्रोग्राम एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू. यस्टरडे इज वर्ल्ड पोस्ट डे एंड अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड पोस्ट डे टू ऑल ऑफ यू. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ऑल आई कैन इमेजिन इज दैट रेड वैन विद इंडियन पोस्ट रिटन ऑन इट एंड क्रॉसिंग माई वे. इट्स सो नॉस्टैल्जिक एवरी टाइम यू सी इट एंड यू cannot be but thankful to all those people who deliver our postal messages.
1: जी.
0: With this, let's just begin our program with the news headlines.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है. इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है. सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था.
0: Houthis claimed fresh missile strikes on Saudi Arabia yesterday, targeting King Khalid International Airport in Riyadh, Najran Airport and an airbase in Khamis Mushayt. The Houthis already reportedly warned workers to stay away from Saudi oil facilities and also airports, identifying them as potential targets. In response, the Saudi-led coalition announced its air defenses intercepted and destroyed three ballistic missiles, two targeting Riyadh and one targeting Khamis Mushayt, and vowed the attacks would not go unpunished. The attacks have disrupted international air travel, leading several airlines, including Air India, Indigo and Akasa, to temporarily suspend flights to Riyadh. The Houthi attacks on Saudi airports drew condemnation from the India, UAE, Jordan, Egypt, Kuwait and Bahrain. In a statement, Ministry of External Affairs said that the targeting of civilian infrastructure is completely unacceptable. The ministry said India expresses its deepest condolences to the families of those who have lost their loved ones. India also expresses solidarity and stands with the people and the government of the Kingdom of Saudi Arabia. Embassy of India in Riyadh has issued advisory to internationals residing in Saudi Arabia to remain alert and vigilant and stay indoors as necessary in view of the current situation. In an advisory, the embassy has urged Indian nationals to refrain from circulating or reposting any videos or news related to the ongoing events. The 24/7 helpline of Pravasi Bharatiya Sahayata Kendra remains available on toll-free number 800-2471-234.
2: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आज प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है. इनमें भारतीय कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिन, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी शामिल हैं. अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ चल रही संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया है. पीईआरएम नाम की यह प्रक्रिया उन नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं. हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने अब तक कंपनियों के खिलाफ जांच के निष्कर्ष या कथित उल्लंघनों का विस्तृत ब्यौरा जारी नहीं किया है. ये रोक पीईआरएम आवेदनों पर लागू होगी. इसमें मौजूदा एच1बी वीजा या ग्रीन कार्ड अपने आप रद्द नहीं होंगे. इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने भी इन आरोपों को खारिज किया है.
0: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price, that is MRP. The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore rupees annually. While essential cancer medicines on the scheduled list are already subject to restrict government-set ceiling prices. This new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines by limiting their margins. Once an expert committee under the Directorate General of Health Services finalizes the list of medicines to be covered, the National Pharmaceutical Pricing Authority will issue the official notification.
2: और तन्वी, अब खबर है जो कल सुबह सुबह आई और उससे अभी भी फिल्म जगत के लोग और नाना पाटेकर जी के फैंस अभी भी स्ट्रोक से उबर नहीं पाए हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाचीवाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर को पुणे हवाई अड्डे पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी वहां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा।
0: And moving to bird spots in cricket, India will take on West Indies in the second of the five-match T20 international series in Ranchi today. The match will begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory.
2: और श्रोताओं, अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो शुरुआत करते हैं
0: चेन्नई से। The Air Force Station at Avadi in Chennai celebrated Indian Air Force Day yesterday in a grand manner as part of the policy to invite Padma awardees, and as the fourth in its series, Air Force Station Avadi invited Padma Shri awardee Dr. V.S. Natarajan, MD, Fellow of the Royal College of Physicians for this occasion. Dr. Natarajan is a pioneer in the field of geriatric medicine, acclaimed as the father of this field in India, and has worked extensively in the field of elderly care. The Deccan Centre for International Relations, an independent think tank under the Institute for Financial Management and Research, in collaboration with IIT Madras, held a one-day international conference titled Building India's Nuclear Ecosystem, Policy, Technology and Industry at IIT Madras. The conference underscored that elements of the strategic community, industry leaders, academics, policy makers and other thought leaders must move together to build a nuclear ecosystem that is safe, competitive, self-reliant and globally respected. National Cadet Corps NCC Group Chennai A, under the aegis of the NCC Directorate Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands, organized a 20-kilometer long cycle rally from Uthandi Toll Place Toll Plaza along the East Coast Road, Chennai, as part of the Drug Free India campaign. The rally was led by the Deputy Director General of the NCC, Commodore Nambiath Sudeep, with enthusiastic participation by NCC cadets from various educational institutions. Carrying banners and placards, the cadets spread the message, "Choose life, not drugs," urging youth to adopt healthy, active and drug-free lifestyles. It highlighted the vital role of the youth and the community in combating substance abuse.
2: और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। खादी महोत्सव 2026 के अंतर्गत कल दिल्ली हाट INA में विशेष खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी में कुल 115 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 48 स्टॉल खादी के हैं, जबकि शेष स्टॉल ग्रामोद्योग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़े उद्यमियों और कारीगरों के हैं। एक खबर है हमारे पास कला से संबंधित है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कनॉट प्लेस में स्थित सेंट्रल पार्क में प्लांट मंडला रंगोली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस प्लांट मंडला रंगोली के माध्यम से विकसित भारत 2047 और विकसित दिल्ली के संकल्प को एक साथ अभिव्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मंडला में लगाया गया प्रत्येक पौधा केवल कलात्मक रचना का हिस्सा नहीं है, बल्कि पौधे लगाने, उनकी रक्षा और पोषण करने तथा दिल्ली के वन और शहरी हरित क्षेत्रों को भी संरक्षित और विकसित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जीवित पौधों से तैयार ये अनूठे रंगोली दिल्ली को हरित और सुंदर बनाने के साथ साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देती है। कला और संस्कृति से जुड़ी एक और खबर है।

0: दिल्ली से दरअसल नमो भारत स्टेशनों के माध्यम से कला संस्कृति और विरासत से लोगों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत नमो भारत स्टेशन प्रदर्शनियों, साहित्यिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक आयोजनों द्वारा लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव कराने और उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
1: Moving towards Bangalore, the Minister for Information Technology and Biotechnology, Priyank Kharge, said that the artificial intelligence-powered language technology platform Bhashini will strengthen digital governance and improve access to citizen services in local languages and dialects in Karnataka. Mr. Kharge informed this during the inauguration of a Bhashini workshop organized by the Department of E-Governance in Bangalore yesterday. He explained that Bhashini opens up as an opportunity to use AI, voice and translation technologies to bridge communication channels between the government and the public.
0: और अब चलते हैं मुंबई की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से सूखाग्रस्त घोषित 265 तालुकों में मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। ये लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे लाभार्थियों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता प्राप्त परिवार श्रेणी में शामिल किया जाएगा और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए अलग अलग छात्रावासों के बजाय सभी समुदायों के छात्रों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने वाले एकीकृत छात्रावास स्थापित करने की भी योजना बनाई है। इस योजना में मंडल स्तर पर लगभग 1000 छात्रों और जिला स्तर पर 500 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास शामिल हैं।
1: And moving towards Hyderabad, the Telangana government has decided to move its administration fully online to make it more open and efficient. Chief Secretary Sanjay Jaju held a review meeting yesterday with senior officials from all departments. He directed them to record complete details of all government employees in the eHRMS system. Officials told the Chief Secretary that data of about 3.48 lakh employees is being entered. So far, about 93% of the data from 38,710 offices has been completed. The Chief Secretary asked officials to finish the remaining work by 15th of this month.
0: और अब समय आ गया है कि मेट्रोज में मौसम कैसा है ये जानने का। तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में कुछ इलाकों के लिए मॉनसून के बाद आज पहली बार लू की चेतावनी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें जॉय सिटी कोलकाता की, तो बारिश के साथ आंधी का भी अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
1: Chennai is likely to see a generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between minimum of 27 degrees and maximum of 35 degrees Celsius. Now, Bangalore is forecast to experience partly cloudy sky and Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky but with haze. The temperature for Bangalore for minimum could be 21 degrees and while maximum may reach 31 degrees. And if we talk about Hyderabad, the temperatures are expected to range from 24 degrees to 35 degrees Celsius. And moving towards our next section, like Jaya has already mentioned, today is World Post Day. So let's talk a little bit more about it. Long before instant messages and video calls, letters connected hearts across mountains, oceans and borders. World Post Day celebrates this remarkable legacy every year on this particular day, that is 9th of October, commemorating the establishment of the General Postal Union in 1874 through the Treaty of Bern, signed by 22 nations.
0: बिल्कुल। और साल 1969 में जापान के टोक्यो में हुए एक सम्मेलन के बाद इस दिन को आधिकारिक तौर पर मनाना शुरू किया गया। आज भले ही संदेश पलक झपकते ही मोबाइल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन भारतीय डाक का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। देश के सुदूर पहाड़ों, जंगलों और सीमा पर तैनात फौजी भाइयों तक खुशियां या उम्मीदें पहुंचाने का काम आज भी

0: हमारा डाक विभाग ही करता है। दिलचस्प बात यह है कि आज का डाकिया सिर्फ कागज की चिट्ठियां नहीं लाता, बल्कि वो ग्रामीण भारत में डिजिटल बैंकिंग, आधार कार्ड, सरकारी पेंशन और जरूरी दवाइयां लेकर सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है।
1: एंड टुडे इंडिया पोस्ट कनेक्ट्स बसलिंग सिटीज विद रिमोट विलेजेस डिलीवरिंग लेटर्स, पार्सल्स एंड एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड पोस्ट डे, टुडे इज आल्सो टेरिटोरियल आर्मी डे। What if the people working in offices, farms and businesses could also wear a military uniform when the nation called? That is the inspiring spirit of India's Territorial Army. Its history dates back to 1920 when the Indian Territorial Force was established under British rule.
0: और स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस सेना का विधिवत उद्घाटन किया था।
1: And today, these citizen soldiers balance civilian careers with military responsibilities, supporting the regular army and contributing to essential operations.
0: और श्रोताओं, महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग है स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना। प्रादेशिक सेना दिवस पर हम उन समर्पित भारतीयों को नमन करते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि देशभक्ति का वास्तविक अर्थ है जब भी राष्ट्र को आवश्यकता हो उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना।
1: And what all happened on this particular day, let's move towards that. Circa 1000 Norse explorer Leif Erikson is traditionally said to have reached Vinland in present-day Newfoundland, Canada, making him the first known European to reach North America. This day is observed annually as Leif Erikson Day in the United States.
0: Iske kuch dino baad 1446 mein
1: The Hangul alphabet, the Korean writing system, was first published under King Sejong the Great. This day is commemorated annually as Hangul Day in South Korea.
0: और वर्ष 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउटवायर के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी।
1: In the year 1962, Uganda became independent from British rule with Milton Obote becoming its first prime minister.
0: 1997 में इटली के अभिनेता और लेखक डारियो फो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2002 का भौतिकी पुरस्कार यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के रेमन डेविस और जापान के कोशिबा को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई। वहीं 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की।
1: In the year 2009, U.S. President Barack Obama won the Nobel Peace Prize for his efforts to strengthen international diplomacy and cooperation.
0: और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जहां हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले आज का दिन देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक को नमन करने का है। आज उत्कल मणि यानी पंडित गोप बंधु दास जी की जयंती है। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी जिले के सुआंडो गांव में हुआ था। गोप बंधु दास जी की एक ओडिया कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। ओडिशा में शिक्षा और सामाजिक चेतना जगाने के लिए उन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की थी। उनके इसी निस्वार्थ देश प्रेम को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें उत्कल मणि यानी ओडिशा का रत्न की उपाधि दी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और ओडिया साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने उन पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इसी के साथ आज ही पुण्यतिथि है जलियांवाला बाग के असली नायक, प्रखर बैरिस्टर और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी की। 15 जनवरी 1888 को अमृतसर पंजाब में जन्मे डॉक्टर किचलू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए और जर्मनी से पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वकालत की चमक धमक छोड़ वे देश की आजादी के मैदान में कूद पड़े। साल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर में आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। उनकी और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक सभा बुलाई गई थी। आजादी के बाद विश्व शांति में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 1952 में प्रतिष्ठित लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है।
1: And today is the birth anniversary

ये आवाज या मरधुन सुनते ही हर भारतीय का सिर श्रद्धा से झुक जाता है और जहन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि उभर आती है। श्रोताओं, ये जादुई रचना किसी और की नहीं बल्कि दिग्गज संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन जी की है। आज इनकी पुण्यतिथि है। रविंद्र जैन जी ने 9 अक्टूबर 2015 में मुंबई में अंतिम सांस ली थी और विरासत में छोड़ गए थे असंख्य कालजयी भजन और सुमधुर संगीत।

क्या बात है, इस बेहद रोमानी और सुरेले गीत को भला कौन भूल सकता है। इस गाने के बोल भी खुद रविंद्र जैन जी की कलम से निकले थे और संगीत भी उन्हीं का था, और इस फिल्म के गानों ने यशोदास जी को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। ये फिल्म चित्तौड़ का गीत है। रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। जन्म से ही आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उन्होंने संगीत को अपनी दृष्टि बनाया।

0: कला के क्षेत्र में रविंद्र जैन जी के असाधारण योगदान के लिए साल 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार भी मिला। भले ही रविंद्र जैन जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत हमेशा जीवित रहेगा।
1: And today we are remembering one of India's most internationally recognized business leaders and philanthropists. We are talking about Ratan Tata. The tycoon led the Tata Group, known as the salt to software conglomerate of more than 100 companies.

0: श्रोताओं, साज बजाने वाले तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन कुछ विरले कलाकार ऐसे होते हैं जो जिस साज को साधते हैं उसी के पर्याय बन जाते हैं। जब भी सरोद का नाम लिया जाता है तो जहन में सबसे पहला नाम उभरता है सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान साहब का। आज सुरों के इस महान जादूगर का जन्मदिन है। श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और तन्वी को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन

0: 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव के महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़ खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर

0: की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं की एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में है। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
2: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5,00,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल समिट ऑन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली टुडे। गवर्नमेंट कैप्स ट्रेड मार्जिन्स ऑन नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स एट 30% ऑफ एमआरपी। Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
5: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes including nutrition, early education, child protection, women's safety and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
4: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price or MRP, a report.
6: The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore annually. While essential cancer medicines on the scheduled list are already subject to strict government-set ceiling prices, this new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines by limiting their margins. Once an expert committee under the Directorate General of Health Services finalizes a list of medicines to be covered, the National Pharmaceutical Pricing Authority,

0: The paper adds, 99% of GST rate and process issues addressed, says Finance Minister Nirmala Sitharaman after 57th meeting of the GST Council. Measures likely to come into effect from April next year. Operation Sindoor showed IAF's combat swiftness, says Air Chief Marshal AP Singh, writes Hindustan Times. Worst of El Nino yet to come. Peak likely in December, says UN body, reports the Indian Express. Anne Carson wins Literature Nobel for giving classics a modern twist, informs The Economic Times. India eyes $1 trillion exports despite global trade headwinds, says Piyush Goyal, leads The Statesman. And finally, as a front page homage, all the dailies lead with a front page tribute and dedicated special columns to Nana Patekar's memory, collectively hailing him as an irreplaceable icon who challenged the hero stereotype with unmatched raw intensity. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. Government caps trade margins on non-scheduled anti-cancer drugs at 30% of MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाती सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। सरकार ने कैंसर की रोकथाम की गैर शेड्यूल्ड दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की हद एमआरपी की 30% तय की है। कीमतें 70% तक कम होने की उम्मीद है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में लोकसभा की 1 सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज की जा रही है। सरकारदा अदाकार नाना पाटेकर की आखिरी रसूम पुणे में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। हौसियों ने सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर फिर से हमले किए हैं। भारत ने वहां रहने वाले अपने शहरियों से चौकस और मुस्तैद रहने को कहा है। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाती सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ये 2 रोजा मीटिंग महकमा जाती सरबराह मीटिंग कल शुरू हुई थी। इसमें ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के शोबे से वाबस्ता सभी रियासतों के सियासी रहनुमा और ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वज़ीर-ए-आज़म ने इमदाद बाहमी वफाकियत को मुस्तहकम बनाने, कौमी तरजीहात की इज्तिमाई मिल्कियत को फरोग देने और मरकज और रियासतों के करीबी इश्तराक के जरिए फैसलों के नतीजों में तेजी लाने की खातिर जो नजरिया पेश किया था, ये महकमा जाती सरबराह मीटिंगों के सिलसिले की दूसरी मीटिंग है। इस सरबराह मीटिंग में 4 अहम मौजूद पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इनमें तग़ज़िया बख्श खुराक, जल, तालीम, बच्चों के तहफ़ और खवातीन की सलामती और उन्हें बाइख्तियार बनाना शामिल है। महकमा जाती सरबराह मीटिंग में मरकज और रियासतों की सरकारों के मुतालिका फरीक मखसूस शोबों की तरजीहात पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा वो अच्छे तौर तरीकों की जानकारी एक दूसरे को दस्तियाब कराने और अमल दरामद से मुतालिक चैलेंजों पर भी गौर खोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ बेहतर बनाई गई हुक्मरानी और खिदमात تفاہم پہنچانے کے لیے مقررہ وقت کے اقدامات پر بھی اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ دلی سے سقلین اختر

0: की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: सरकार ने कैंसर की रोकथाम की गैर शेड्यूल्ड दवाओं की सप्लाई और फरोख्त के लिए मार्जिन की हद एमआरपी की 30% तक महदूद कर दी है। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स महकमे की वजारत ने यह उम्मीद जाहिर की है कि इस कदम से दवाओं की कीमतें 70% तक कम हो जाएंगी और इस तरह कैंसर के मरीजों को सालाना 2500 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिल सकेगी। शेड्यूल लिस्ट में शामिल कैंसर की जरूरी दवाएं पहले ही सरकार के मुकर्रर करदा कीमतों की हद के दायरे में आती हैं और अब इस नए फैसले से गैर शेड्यूल्ड कैंसर की दवाएं भी उनका मार्जिन महदूद किए जाने से कीमतों के कंट्रोल के दायरे में आ जाएंगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा सीट पर होने हुए जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मंगल के रोज जिन 5 असेंबली सीटों पर पोलिंग हुई थी उनमें तमिलनाडु में मदुरंतकम और धर्मपुरम, पुदुचेरी में थटन चावड़ी और मगरबी बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम शामिल हैं। आसाम में नागांव में वाहिद लोकसभा सीट पर भी पोलिंग हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि त्रिपुरा में उमंगों वाले जिलों और मुतहरिक गांवों की स्कीमों के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: नीति आयोग के उमंगों वाले जिलों के प्रोग्राम के तहत त्रिपुरा के दूरदराज जिला धलाई में जबरदस्त तब्दीली आई है। जचगी की देखभाल, बुनियादी तालीम, सीखने से हासिल होने वाले नतायज, माइक्रो आबपाशी और देही सड़कों के राबते में हदफशुदा इकदाम ने जिला की समाजी इकतसादी बुनियाद को मुसलसल मजबूत किया है। बरवक्त डेटा रैंकिंग और कारकर्दगी से मुतालिक तरगीब की बदौलत धलाई ने मुसलसल मुल्क भर के बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ज़िलों में जगह बनाई है, जिसने यह साबित किया कि डेटा पर मबनी गवर्नेंस और मकामी वसाइल का मिलाप किस तरह पसमादा कबायली इलाकों को बुनियादी सतह की तरक्की के मॉडल में बदल सकता है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर तवील सरहद के साथ दरक्षा गाँव प्रोग्राम सरहदी बस्तियों को खुदकफील मराकज में तब्दील कर रहा है। जदीद डिजिटल नेटवर्क्स, तमाम मौसमों के लिए मौजूद सड़कें, पाइप के जरिए पानी की फराहमी और शमसी तवानाई देरीना बुनियादी ढांचे के अखला को पुर कर रहे हैं। मकामी हैंडलूम, इको टूरिज्म और सरहदी तजारत की हिमायत करते हुए ये पहल मकामी कारोबार को फ़रोग देती है, नकल मकानी को रोकती है और फाल व लचकदार सरहदी कम्युनिटीज़ को तश्कील देकर कौमी सलामती को मजबूत करती है। हरी श्यामुख पंचायत कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि
3: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव के महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूह को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
2: एक साथ मिलकर ये दो अहम इकदाम त्रिपुरा में ढांचा जाती और जोग्राफियाई खला को पुर कर रहे हैं। अंदरूनी ब्लॉकों में इंसानी तरक्की को सरहदी बाढ़ के साथ स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी के साथ जोड़कर ये प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर शहरी दूरदराज के अंदरूनी गांव से लेकर जीरो लाइन गाँव तक रियासत की वसी तर तरक्की की कहानी में शामिल हो। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर की आखिरी रसूम पूरे सरकारी एजाज के साथ महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक दोंजे में उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में अदा कर दी गई। उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने उनके कुनबे के अफराद, रिश्तेदारों, दोस्तों और मद्दाहों की मौजूदगी में कल रात तकरीबन 11:30 बजे उनकी आखिरी रसूम अदा की। आखिरी रसूम से पहले सरकर्दा अदाकार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।

0: नाना पाटेकर के जज्बे खाकी जब पुणे हवाई अड्डे पहुंचा तो महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उनके जज्बे खाकी को डोंजे ले जाया गया, जहां मरकजी वजीर रामदास अठावले, मरकजी वजीर मम्लिकत मुरलीधर मोहोल और दीगर अफराद ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। नाम फाउंडेशन के जरिए नाना पाटेकर के समाजी काम को भी खास तौर से किसानों की मदद और खुश्क साली से मुतासर बरादरियों के लिए उनकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। नाना पाटेकर के इंतकाल से भारतीय सिनेमा ने न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार खो दिया है बल्कि एक पुरअज़्म समाजी कारकुन से भी महरूम हो गए हैं। उनकी बेहतरीन अदाकारी, मुनफरिद आवाज और अंदाज और समाजी मामलात के तई उनकी लगन को हमेशा याद रखा जाएगा। माधव जय भाई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल धमाका खेज मादों को बेअसर करते वक्त एक हादसे में CRPF के 4 अहलकार जख्मी हो गए। माओवादियों ने रियासत में बस्तर डिवीजन के अंदरूनी और दूरदराज के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर देसी साख्त के कई धमाकाखेज हरबे लगा रखे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें नाकारा बनाने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: रियासत में सुकमा जिले के बेजी थाने के तहत आने वाले इलाके में एलआर माडगू कैंप के नजदीक बोधराज पादर नाले के करीब गोली बारूद के शोबे से वाबस्ता एक तकनीकी टीम और CRPF के अहलकार धमाका खेज मादों को नाकारा बनाने का अमल अंजाम दे रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान एक धमाका खेज हरबे का एक हिस्सा नज़दीक में गिरकर फट पड़ा। इस वाकये में 4 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए, इनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। सभी जख्मी अहलकारों को मजीद इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: केरलम में इंडिया पोस्ट का महकमा दुबई से तलवीब जाने वाले हवाई जहाज में सवार 174 अफराद की जान बचाने पर जांबाज भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की इज्जत अफजाई के लिए आज तिरुवनंतपुरम में एक खसूसी तकरीब में एक स्पेशल कवर जारी करेगा। ये वाकया पिछले महीने की 30 तारीख को पेश आया था। फ्लाई दुबई की परवाज में चाकू के हमले में जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छर ने गैर मामूली दिलेरी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए हवाई जहाज को सऊदी अरब के ताबुक में बाहिफाजत उतार लिया था। हौसियों ने एक बार फिर कल सऊदी अरब पर हमलों का दावा किया है, जिनमें रियाज में शाह खालिद बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे, नजरान हवाई अड्डे और खमैस मुशैत में एक फजाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हौसियों ने वर्करों को वार्निंग दी है कि वो सऊदी तेल मराकज और हवाई अड्डों से दूर रहें। इसके जवाब में सऊदी क्यादत वाले इतिहाद ने ऐलान किया है कि उसके फजाई दिफाई निज़ाम ने 3 बैलिस्टिक मिजाइलों को बीच में ही रोका और तबाह कर दिया और अहद किया है कि इसके कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। इन हमलों के सबब बैन-अल-अक़वामी फिजाई सफर में रखना पैदा हो गया है और एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा समेत मुख्तलिफ सरकर्दा एयरलाइंस ने रियाज के लिए अपनी परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने सऊदी हवाई अड्डों पर हौसियों के हमलों की मजम्मत की है। UAE की खारजी उमूर की वजारत ने यह कहते हुए एक बयान जारी किया है कि ये हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं और एयादा किया है कि UAE सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती रखता है। रियाज में भारतीय सिफारतखाने ने सऊदी अरब में रिहायश पजीर भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट और मुस्तैद रहें और बगैर ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं। इस एडवाइजरी में सिफारतखाने ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो जारी वाकया से मुतालिक कोई वीडियो या खबर शेयर या रिपोस्ट करने से गुरेज करें। उन्हें मकामी हुकाम की जानिब से जारी हिदायत की पाबंदी करने को भी कहा गया है। रियाज में भारतीय सिफारतखाना और जद्दा में कौंसलखाना VFS के जरिए मामूल के मुताबिक कामकाज कर रहा है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन-अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत इफ्तिताही मुकाबला जीतने के बाद, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, सीरीज में 1-0 से आगे है। बैडमिंटन में फिनलैंड में 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी PV सिंधु आर्कटिक ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। सिंधु ने दूसरे राउंड में जापान की रिको गुंजी को 21-15, 21-15 से हराया। छठी पोजीशन की भारतीय खिलाड़ी का मुकाबला अब टॉप पोजीशन की खिलाड़ी

0: और सादिक आलमी चैंपियन थाईलैंड की अतनचोक इंतानोन से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, 5G नेटवर्क की रसाई मुल्क के हर ज़िले तक हुई, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंडिया मोबाइल कांग्रेस की तकरीब से खिताब। अखबार प्रताप ने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि GST के नफाज से पहले मुल्क में टैक्स का निज़ाम इंतहाई पेचीदा था, मुल्क में वन नेशन वन टैक्स होगा, GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला किया गया। अखबारात ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमलों की भारत की तरफ से की गई मजम्मत को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने एयर चीफ मार्शल AP सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि कौमी मफादात के तहफ्फुज के लिए फजाई ताकत अहम जरिया। अखबारों ने मारूफ अदाकार नाना पाटेकर के इंतकाल की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। सरकार ने कैंसर की रोकथाम की गैर शेड्यूल्ड दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की हद MRP की 30% तय की है, कीमतें 70% तक कम होने की उम्मीद है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में लोकसभा की एक सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज की जा रही है। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर की आखिरी रसूम पुणे में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली की और 8:46 पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

वेल जनाब, आशा किशोर की खूबसूरत आवाजों से सजा ये टाइमलेस गोल्डन क्लासिक है 1982 में आई फिल्म ये वादा रहा से। म्यूजिक आर डी बर्मन का और लिरिक्स गुलशन बावरा के, लेकिन फीलिंग्स हमारी है जनाब 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जो रहता है साथ आपके 24 घंटे लेकर ताज़ा तरीन जानकारी और गोल्डन म्यूजिक। अगर आपने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो मैं ये बता दूं कि ये

0: है म्यूजिकल दिल्ली की और मैं हूं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और आज है 9 अक्टूबर जिसे याद किया जाता है पंडित उत्कल मणि गोपाल बंधुदास की जयंती के रूप में, जिसके बारे में हम बात करेंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसी ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
2: पूजा,
3: अरे सुन क्यों नहीं रही,
4: मुझे इग्नोर कर रही हो।
5: ये बात अब सबको पता चलेगी।
1: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
6: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, इहबास और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

8:54 और 48 सेकंड पर ये है 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली की, और आज है 9 अक्टूबर, जिसे याद किया जाता है पंडित उत्कल मणि गोपाल बंधु दास की जयंती के रूप में। 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा में जन्मे पंडित उत्कल मणि गोपाल बंधु दास एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सुधारक, पत्रकार, कवि और निबंधकार थे। देश और समाज के उत्थान के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और वर्ष 1909 में उन्होंने पुरी के समीप सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जो गुरुकुल परंपरा पर आधारित था, जहां सभी जाति और वर्गों के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। 1919 में उन्होंने ओडिया साप्ताहिक समाचार पत्र द समाज की शुरुआत की, जो आज भी एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है, और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और वे ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। और बात करते करते वक्त की सुई लगातार आगे बढ़ रही है। 8:55 और 55 सेकंड हो गए हैं और एक खूबसूरत गाना इंतजार कर रहा है आपका म्यूजिकल दिल्ली में।

दोस्त, हमारे जीवन में विचारों का बहुत महत्व होता है और खास तौर से विचार अगर सकारात्मक हों तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव थॉट्स को, सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो आपका शरीर और उसके आसपास फैली एनर्जी सब पॉजिटिव होने लगते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों को का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। इन सीटों पर मतदान मंगलवार को हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
2: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआर मडगू कैंप के पास बोधराज पदर नाले के करीब एम्यूनेशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची

में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 4,200 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा की 22वीं कड़ी। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलों की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
2: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
1: ताकि उसका प्रभाव

0: नजर आया और बेहतर समझ में आया। डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
1: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा,
0: बिल्कुल
1: 4-5 साल 3 साल लगते हैं बनाने में, इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीजों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंच मार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंच मार्क फॉर मैनी ऑफ द इनिशिएटिव दैट विल एंड हैव चेंज्ड द ईज ऑफ लिविंग फॉर आर फैमिलीज।
0: ओके,
1: तो उस बेंच मार्क से आपसे आगे बात बढ़ाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
2: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें घर में रहकर आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार है उसकी देखभाल करिए आप। तो आप मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है, पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका, वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिसे इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
2: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी, इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवर और होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है ये, हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये केवल स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है, आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया, और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है, तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है, उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
0: जी।
2: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है, इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे, अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं।

0: सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है, वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक
1: यानी काफी लेयर्ड टर्म है। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गाँव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास है कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा है, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
0: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी नियर का, जाना आना और तैयारी, ये वक्त ज्यादा

0: जाता था, एनर्जी जाता था। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
0: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है। जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में, यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
1: बिल्कुल।
0: टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं ये कहूंगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर।
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा। शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है,
2: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
0: उस
2: घर की तो दशा उसी दिन बदल गई,
1: उसी दिन बदल गई।
2: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था उस टाइम पे एवरी सेकेंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकेंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ्स है ये, रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप सोचो। आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था, और आज हमें 79% 80%, 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता है कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़ अमेरिका 33 ब्राजील 21 और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-6-7 साल के अंतर अमेरिका इंग्लैंड ब्राजील उतने बड़े हाउस होल्ड में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
2: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
2: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
2: स्वच्छ हो भारत, गांव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है, और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी,
2: ठीक है, आइडिया बन जाता है वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि

0: इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाया, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है? और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में?
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट?
1: जी।
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए, कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती।
1: बिल्कुल
2: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा, सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती, सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
1: बिल्कुल,
2: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है, आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों,
1: दो अलग अलग नजरियों
2: दोनों के रिस्पांस में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी।
2: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब, और जो पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है, मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के आप उसके देखिए बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
1: जन जनता की कैटेगरी में,
2: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
0: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहली जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने

0: एक्सटेंशन फिर क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
0: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग, 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
0: इतने लोग, और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
1: जी।
0: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है, 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डालनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों की, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर आजकल। अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा, मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
2: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो, उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसी ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को

0: बहुत बेहतर करता है और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है 6000 की पॉपुलेशन के लिए, उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, या पिछली बार आपने देखा मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए। वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
2: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है, जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है
1: जी।
2: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। तो आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है, और आम आदमी कि जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
2: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसको कवरेज का, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
1: जी।
2: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया।

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

मॉर्निंग दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। एक छोटी सी बात ना हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, पर हर दिन में कुछ परफेक्ट जरूर होता है। आज उस एक परफेक्ट पल को ढूंढिए, चाय की चुस्की हो, किसी की मुस्कान हो या बस खुली हवा। खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में ही छिपी होती है, बस हमें देखना आना चाहिए। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस।

तो भाई हर बार आपको एक योजना के बारे में जरूर बताती हूँ, किसी मिशन के बारे में जरूर बताती हूँ। तो आज बात होगी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इस मिशन की, जिसे हम मिशन लाइफ के तौर पर भी जानते हैं। भारत के नेतृत्व में शुरू किया गया एक वैश्विक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक आदतों में बदलाव लाना है। इसकी

कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में की थी और इसका आधिकारिक शुभारंभ हुआ था 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में। दोस्तों, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मतलब कोई बड़ा त्याग नहीं है, इसका मतलब है जीने का वो तरीका जहां हम धरती को भी अपनी फैमिली मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। हम एसी का टेम्परेचर 24 पर रखकर बिजली बचाते हैं, तो वो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम एक थैला घर से लेकर जाते हैं ताकि हमें पॉलिथीन में सामान ना लाना पड़े। हम खाने को फेंकते नहीं, पौधों को पानी देते हैं, साइकिल से ही आसपास के काम निपटा लेते हैं। ये सब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमारे दादा दादी तो सालों से ऐसी ही लाइफ जीते आ रहे हैं। कपड़ों को रफू करना, खाने को शेयर करना, चीजों को फेंकने से पहले दो बार सोचना। जो आज बात उन्हें छोटी छोटी आदतों की है, तो हमें उनसे ये सब सीखना चाहिए जो हमारी जेब खर्च भी बचाते हैं और पर्यावरण को भी। दोस्तों, पर्यावरण कहीं बाहर नहीं, हमारी लाइफस्टाइल में बसता है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये आंदोलन प्रो प्लानेट पीपल यानी P3 की अवधारणा पर काम करता है, यानी ऐसे लोग जो पर्यावरण के अनुकूल सोचते और जीते हैं। त्रिस्तरीय रणनीति, इसके तहत मांग में परिवर्तन, दैनिक जीवन की आदतों को बदलना, ये सब शामिल है। बाजारों को टिकाऊ विकल्पों के लिए प्रेरित करना यानी आपूर्ति में परिवर्तन, सरकार के स्तर पर समर्थन यानी नीति में परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो भाई प्राचीन भारतीय ज्ञान की, यानी ये इस विचार पर आधारित है कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने की सीख देती हैं। 7 प्रमुख विषयों पर काम करता है ये मिशन, जैसे कि पानी बचाओ, दैनिक उपयोग में जल की जो बचत है वो करना बहुत जरूरी होता है, छोटी छोटी आदतों को उसमें शामिल करना कि जब हम ब्रश करते हैं तो नल को खुला ना छोड़े, जब थोड़ा सा पानी लेना हो तभी हम नल खोलें। और इसके अलावा ऊर्जा बचाओ, बिजली और अन्य ऊर्जा स्रोतों का दिमाग से इस्तेमाल करना, ये नहीं कि यूजलेस वो चीजें चलती रहें। कचरा कम करना, कचरे के उत्पादन को सीमित करना और रिसाइकिलिंग पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही इस्तेमाल और निपटान करना यानी ई कचरा कम करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना यानी एकल उपयोग वाली यानी वन टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उससे बचना, और सतत खाद्य प्रणालियां यानी स्थानीय और मौसमी भोजन अपनाने पर जोर देना, स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण के अनुकूल स्वस्थ आदतें अपनाना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें सिखाती हैं कि भाई लाइफस्टाइल कैसा हो जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा असर ना हो। तो आज ही से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए और इस धरती को खूबसूरत बनाइए।

दोस्तों आज एक और खास दिन भी है, यानी 9 अक्टूबर है। तो आज का दिन जो है वो भारत में प्रादेशिक सेना दिवस यानी टेरिटोरियल आर्मी डे या का स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले गवर्नर जनरल सी रामगोपालाचार्य द्वारा की गई थी। इसके लिए प्रादेशिक सेना अधिनियम 18 अगस्त 1948 को पारित किया गया था और ये नियमित भारतीय सेना के बाद देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति है। इसमें देश के नागरिक स्वयं सेवक के रूप में आंशिक समय यानी पार्ट टाइम के लिए सेवा देते हैं, जो सामान्य नागरिक पेशों के साथ साथ राष्ट्र रक्षा में योगदान करते हैं और उनका आदर्श वाक्य होता है सावधानी और शौर्यता। और इसके अलावा आज वर्ल्ड पोस्ट डे भी है। याद है वो लाल रंग का लेटर बॉक्स, नुक्कड़ वाला, वो पोस्टमैन अंकल की खाकी वर्दी और कंधे पर लटका चिट्ठियों से भरा थैला। पहले एक चिट्ठी का हफ्तों इंतजार होता था और जब वो आती थी तो पूरे घर में खुशी फैल जाती थी। आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, ईमेल्स हैं, सब कुछ सेकंड्स में पहुंच जाता है, पर सच कहूं तो हाथ से लिखी चिट्ठी का जो सुकून था ना, वो आज कहीं पर भी नहीं मिलता। आज का दिन उसी डाक विभाग के नाम है, उसी भरोसे के नाम है, जो आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो, हर दरवाजे तक हमारा पैगाम पहुंचाता है। आज हम मना रहे हैं विश्व डाक दिवस, जो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो विश्व डाक संघ की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। आज की इस बार के जो थीम है उसकी अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम है वन पोस्टल नेटवर्क इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, यानी एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं। और 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। दरअसल ये दिन जो है वो लोगों और व्यवसायों के जीवन में डाक सेवाओं के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानता है और वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक नेटवर्क की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। इसके जरिए भारत में ये सप्ताह वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और इंडिया पोस्ट की सेवाओं को प्रदर्शित करता है। तो वे ये है आज के दिन की खासियत। और अब मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा है तो इस प्यारे से गीत के साथ म्यूजिकल दिल लगी से मैं लेती हूँ आपसे विदा। आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस फिर से रहेगी आपके साथ 10:30 बजे लेकर दिल का मेल बॉक्स। और इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। वर्ल्ड न्यूज और विश्व दर्पण भी आप सुन सकेंगे बस थोड़ी देर में।

0: गोल्ड, खरा सोना।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: ऐकत रहा एफएम गोल्डवर।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

रूप तुला नस्ताना, एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना, रूप तुला नस्ताना, एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना, कौन हीरोइन तुझला कर लगा अका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने

हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11:05। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी पन्नों पर उतारा जाएगा उसमें एक ऐसे फनकार का जिक्र सुनहरे अक्षरों में होगा जिसने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी कविताओं को उकेरा। एक ऐसा फिल्मकार जिसकी कैमरे की नजर इतनी गहरी थी कि वो इंसान की रूह के भीतर झांक लेती थी, जिसने अपनी फिल्मों में रोशनी और परछाइयों का ऐसा खेल रचा जो आज भी फिल्म संस्थानों में पढ़ाया जाता है।

जी हाँ दोस्तों, आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त साहब के बारे में। गुरुदत्त महज एक फिल्म मेकर नहीं थे, वो सेल्यूलॉइड के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने फिल्मों का हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह मुकम्मल करके रखा था। उनकी फिल्मों में इसकी खूबसूरती बखूबी नजर आती थी। उनकी फिल्मों की सादगी, गहरा फलसफा और किरदारों की कश्मकश दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर जाती थी। तो आइए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं उनकी ही एक ऐसी ही कालजयी फिल्म के एक बेहद ही प्यारे गीत के साथ।

गुरुदत्त साहब का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बचपन से ही कला और संस्कृति के प्रति उनका रुझान बहुत गहरा था। उनके इसी कलात्मक झुकाव को देखते हुए उन्हें मशहूर नर्तक उदय शंकर की अल्मोड़ा स्थित डांस एकेडमी में नृत्य सीखने भेजा गया। शायद यही वजह थी कि उनकी फिल्मों के दृश्यों में एक अनोखी लय और ताल नजर आती थी। करियर की शुरुआत में उन्होंने प्रभात कंपनी पुणे में एक कोरियोग्राफर और सहायक निर्देशक के रूप में काम शुरू किया, जहां उनके अभिनय और निर्देशन की नींव बेहद मजबूत हुई।

0: दोस्तों, कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
4: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
3: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
4: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
3: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
4: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नींद नहीं आती है रातों में,
2: रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

गुरुदत्त साहब की कला समय से बहुत आगे की थी। उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो गहराई और जो दार्शनिक दृष्टिकोण दिया, वो आज की युवा पीढ़ी के फिल्मकारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज का हर बड़ा निर्देशक उनके काम को अपना गुरु मानता है। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही गुरुदत्त साहब का सिनेमाई सफर छोटा रहा हो, लेकिन अपनी कला के जरिए वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, गुरुदत्त साहब की विरासत हमें यही सिखाती है कि सच्ची कला कभी मरती नहीं, वो पीढ़ियों तक दिलों में धड़कती रहती है।

इसी गीत के साथ आज का कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर मुजव्वजा एहतजाज की इजाजत नहीं दी है। अमन कानून बरकरार रखने की खातिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 नाफिज की गई है। कल सुबह सवेरे 4 बजे और दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपने पहले स्टेशन से ही मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान सावडी असेंबली सीट का ज़िमनी चुनाव जीत लिया है। 4 असेंबली हलकों और लोकसभा की एक सीट के ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर CJP की तरफ से मुजव्वजा मुजाहिरे की इजाजत नहीं दी है। आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस की जॉइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर मुजाहिरे या दीगर प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत की दरखास्तों को कम से कम 10 दिन पहले दाखिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले CJP को इस जगह पर मुजाहिरा करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो मजकूरा रहनुमा खतूत और अपनी तरफ से किए गए तहरीरी वादों पर अमल करने में नाकाम रही। जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि इजाजत न देने का फैसला पार्टी की पिछली नाकामी के तनाजुर में किया गया है कि वो नई दिल्ली इलाके में पुलिस के रहनुमा खतूत और उसके अपने तहरीरी वादों, नीज मौजूदा नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल, अवामी हिफाजत और ट्रैफिक

0: शर्तों पर अमल न कर सकी।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज हैं, जिनकी रूह से अवामी हिफाजत और अमन कानून बरकरार रखने के लिए जरूरी बंदिशें लागू हैं। उन्होंने खबरदार किया कि दिल्ली पुलिस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ मौजू कार्रवाई करेगी। आज दोपहर 2 बजे के बाद से सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जो अपने पहले स्टेशन से रवाना होंगी और उन्हें नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह और दोपहर 2 बजे के दरमियान पहुंचना है, उन्हें उनके पहले स्टेशनों पर ही मनसूख कर दिया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया कि यह फैसला इन दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में सड़कों पर शदीद इम्कानी ट्रैफिक हजूम के तनाजुर में लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के बारे में महकमा जाति सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे में शिरकत करेंगे। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी, जिसमें सभी रियासतों के सियासी रहनुमा और ख़वातीन और बच्चों की तरक्की से मुतालिक अफसरान शिरकत कर रही हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा जाती सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिसका तसव्वुर वज़ीर आज़म ने इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने, मुल्क की तरजीहात की इज्तिमाई जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और करीबी मरकज रियासत शराकत दारी के जरिए इसके नतीज में तेजी लाने के लिए पेश किया था। इस कॉन्फ्रेंस में 4 अहम मौजूद पर तवज्जो दी जा रही है, जिनमें तग़ज़िया, इब्तदाई तालीम, बच्चों की हिफाजत, खवातीन की हिफाजत और उन्हें बाइख्तियार बनाया जाना शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में शोभा जाती तरजीहात पर बातचीत करने, अच्छे तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकिफ करने, चैलेंजों से निपटने पर अमल दरामद और बेहतर हुक्मरानी और खिदमात बहम पहुंचाने से मुतालिक मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर कार्रवाई से इत्तेफाक करने के लिए मरकज और रियासती सरकारों के मुतालिका फरीकें यकजा होंगे। न्यूज डेस्क से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी हुकूमत ने बच्चियों को रहम मादर में ही कत्ल कर दिए जाने की रोकथाम, बच्चियों की हिफाजत और तालीम को यकीनी बनाने और लड़कियों के लिए बराबरी के मौकों को फरोग देने के मकसद से साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू की थी। पिछली दहाई में ये मुहिम एक अवामी तहरीक बन गई। इस मुहिम में लड़कियों के जिंदा रहने, उनकी हिफाजत, तालीम और मजमूई तरक्की पर तवज्जो दी गई है। इस मुहिम के तहत स्कूलों में बच्चों के दाखिले, तालीम जारी रहने, महफूज जचगी और सफाई सुथराई को भी फरोग दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हुई। अपने 3 रोजा दौरे में वो सिंगापुर के रहनुमाओं, तजारत और सरमायाकार बिरादरी के सीनियर अरकान और आलमी इदारों के सरमायाकारों के साथ बहुत सी आला सतह की सरगर्मियां अंजाम देंगी। अपने दौरे में मोहतरमा सीतारमन सिंगापुर के सदर तरमन शनमुगा रत्नम और वजीर आजम लॉरेंस फोंग से मुलाकात करेंगी। वो सिंगापुर के नायब वजीर आजम गान किम योंग और वजीर खारजा डॉ विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगी। मुज़ाकरात में भारत सिंगापुर जामे दिफाई शराकत दारी के अहम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इलाकाई फौज के यौम तासीस के मौके पर इसके सभी अहदेदारों, रिटायर्ड अहलकारों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इलाकाई फौज नागरिक भी सैनिक भी की मिसाल पेश करती है, जो गैर मामूली अजाइम के साथ मुल्क की खिदमत के लिए मामूली शहरियों के अज़्म की अक्कास है। वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका के लेबर महकमे का कुछ कंपनियों के लिए मुस्तकिल लेबर नोटिफिकेशन प्रोग्राम PERM से मुतालिक फैसला H-1B वीजा प्रोग्राम से मुख्तलिफ है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि परम दरखास्तों को मुअत्तल किया जाना बजाती खुद मौजूदा H-1B प्रोग्राम या H-1B वीजा के हामिल अफराद और उन पर मुनहसर अफराद की हैसियत के जवाज को मुतासर नहीं करता। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज डाक के आलमी दिन के मौके पर सभी डाक सेवकों को मुबारकबाद दी है और मुल्क के तहीं उनके पुरअज़्म खिदमत के लिए तशक्कुर का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंधिया ने यह बात दोहराई कि डाक सेवा ही जन सेवा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि डिजिटल मुवासलात के दौर में इंडिया पोस्ट

0: भी डिजिटल तब्दीलियों को अपना रहा है। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के टेलीकॉम और डिजिटल शोबों में पिछली दहाई के दौरान काबिल जिक्र तब्दीली आई है और ये शोबे आलमी सतह पर नुमाया हुए हैं। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत दुनिया में ऐसा पांचवां मुल्क भी बन गया है जिसने अपने तौर पर 4G नेटवर्क तैयार किया है। पुदुचेरी में तट्टान सावड़ी असेंबली हलके के लिए ज़िमनी इंतखाब में डाले गए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद ने 8,482 वोटों से इस सीट पर जीत हासिल की है। ये सीट पुदुचेरी के वजीर आला एन रंगासामी ने खाली की थी। अशोक आनंद को कुल 13,358 वोट मिले जबकि उनके करीब तरीन हरीफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनयगम को 4,876 वोट मिले। तमिलनाडु के असेंबली हलके मदुरांतकम और धरापुरम में होने वाले जिमनी चुनाव में हुक्मरान टीवी के सबकत बनाए हुए हैं। मदुरांतकम में वोटों की गिनती के छठे दौर में टीवी के उम्मीदवार मरगातम कुमार वेल 23,884 वोटों से सबकत बनाए हुए हैं जबकि डीएमके 15,724 वोटों के साथ दूसरे मकाम पर है। धरापुरम हलके में वोटों की गिनती के 11वें दौर में टीवी के उम्मीदवार 31,327 वोटों से आगे हैं जबकि डीएमके के उम्मीदवार ने 25,841 वोट हासिल किए हैं। एआईएडीएमके के उम्मीदवार के भानुमति ने 21,363 वोट हासिल किए हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 टी20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत इफ्तिताही मुकाबला जीतने के बाद जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी सीरीज में 1-0 से आगे है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर मुजवजा एहतजाज की इजाजत नहीं दी है। अमन कानून बरकरार रखने की खातिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 नाफिज की गई है। कल सुबह सवेरे 4 बजे और दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेल गाड़ियां अपने पहले स्टेशन से ही मनसूख कर दी गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में खवातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान सावड़ी असेंबली सीट का जिमनी चुनाव जीत लिया है। 4 असेंबली हलकों और लोकसभा की 1 सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टी20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 PM today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 AM and 2 PM tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of departmental summit on women and child development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins Tattan Javadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies US suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view

0: added that though there could be some impact on the permanent residency or green card process of eligible employees of the affected companies. Earlier, the Trump administration has had announced the suspension of a key employment-based green card process for 8 major technology and outsourcing companies, including Indian firms Infosys, TCS, Wipro, and HCL. The action also covers Cognizant, Capgemini, Microsoft, and Adobe. In cricket, India will take on the West Indies in the second of the 5-match T20 international series in Ranchi today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match, with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory. The India Meteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over South Interior Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Tan Chowdhury Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies US suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के PERM आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है, और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है।

0: पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि

0: वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच, HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं, बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को

0: ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नादब्रह्म। आज सीमा दामले यांनी गायलेला राग भीमपलास आपल्याला ऐकवत आहोत। विलंबित आणि द्रुतबंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ संदेश पोपटकरी यांनी आणि हार्मोनियमची साथ संदीप गुरमुले यांनी केलेली आहे। ऐकूया सीमा दामले यांनी गायलेला राग भीमपलास।

0: माँ तने भेटवानु मन माँ तू सांभरे रे, माँ तने जोवा जंखे मन माँ तू सांभरे रे। खूबज करुण एवं आ गीत एनाथी कार्यक्रम की शुरुआत। मित्रों आ माँ जयरे जीवन में हो त्यारे जीवन में बधूज हो कोई ज वस्तु की कमी होती नहीं। अने त्यारे आपने जो एनी किंमत समझिए कि आ जे संबंध आपने मळ्यो छे ए केटलो अमूल्य छे, जो एनी किंमत एनी हयाती में समझाई जाए ने तो आपणुं जीवन खरेखर धन्य बने। परंतु एनी हयाती में जो एनी किंमत न समझाय अने पाछळथी आपणे पितृपक्ष में जो एने याद करिए तो ए साव नकामुं छे। अने माँ जेनी पासे न होय एटले जन्मतानी साथे ज जो बाळक अनाथ थई जाए अने माँ शुं होय ए जो एने खबर न पड़े तो एवा व्यक्ति एवा बाळको खरेखर कमनसीब होय छे के जेने माँनो खोड़ो मळतो नथी। तो आजना कार्यक्रमनी शुरुआत आ करुण गीतथी कोणे करी छे तमने खबर छे? ए ज तमारो मस्तीखोर तोफानी पछी हसमुखो अने बीजो शो
1: गमतीलो मोजीलो
0: गमतीलो ने मोजीलो धर्मेश व्यास
1: 100.1 FM गोल्ड खरा सुना ने न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सांभळी रह्या छो गुजराती गीतोनो कार्यक्रम गीत गुजरी। दररोज बपोरना 3 वाग्या थी लईने 4 वाग्या सुधी 100.1 FM गोल्ड पर आप माणी शको छो गुजराती गीतो। मित्रों आज आपणे आगळ वधीए पहेला आपणे जणावी दईए कि आजे छे तारीख 9 ऑक्टોબર 2026 अने शुक्रवार, तेमज समय थयो छे बराबर बपोरना 3:08 અને 16 સેકન્ડ।
0: तो धर्मेश शुरुआत जो ते रड़ावीने करी छे एटले आजे आखा कार्यक्रम में साथे रूमाल टीश्यू पेपर एवं कंईक राखवानी जरूर खरी?
1: ना ना ना ना ना, आजे आपणे माने याद करीशुं, माने माने याद करीशुं, ना करता हूँ कहीश के माना एवा अमुक वाक्यो छे जेने याद करीशुं।
0: तो आपणा श्रोता मित्रोने आपणे सवाल पूछीए के श्रोता मित्रो तमारा मम्मीना तमारी माना एवा कया वाक्यो छे